0: पानी ऑमलेट खाती है।
1: कोनो तमागो याकी अमाकते ओइशी देस।
2: ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
0: मिया कहती है,
3: काइतो वा होंतो नी रियोरी गा जोजू दा ने।
2: काइतो, आप वाकई खाना पकाने के माहिर हैं।
0: काइतो जवाब देता है,
4: बुकु शेफ नी नारिताई दा।
2: मैं बावर्ची बनना चाहता हूँ।
0: मिया सर हिलाकर कहती है,
3: ई ने।
2: ये तो अच्छा है।
0: ताम और मिया काइतो की खाना पकाने की महारत से खासी मुतासर मालूम होती हैं।
2: मुझे यकीन है कि काइतो पेशावर बावर्ची बनने में कामयाब हो जाएगा। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
4: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
1: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
3: काइतो वा, होंतो नी रियोरी गा जोज़ू दा ने।
4: बुकु, शेफ नी नारिताई दा।
3: ई ने।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
1: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज़ायद तासीरात का इजहार कर सकते हैं।
2: कोनो तमागो याकी की मानी है ये जापानी ऑमलेट। तमागो याकी या जापानी तर्ज का ऑमलेट खाने के डिब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है। इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है। हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है। अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है, और ओइशी के मायने है मज़ेदार। आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतल्लिक है। ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा। आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमाकते बनता है, और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: अमाकते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकते ओइशी देस।
0: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
2: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा था?
2: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है, और दो देशता का यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
0: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
2: हिरोकुते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरेई दे, ना इसमें सिफत किरेना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है। तोतेमो योकत्ता देस का मतलब है बहुत अच्छा था।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: हिरोकुते, हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
2: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क। फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है। आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है। छोटा की जापानी है
5: चीसाई, चीसाई,
2: और प्यारा को कहते हैं
5: कवाई, कवाई,
2: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं। सामीन कोशिश करें।
7: चीसकते कवाई देसने, चीसकते कवाई देसने।
2: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है। आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है। वक्त की पाबंद यानी
5: सेकाकुना, सेकाकुना,
2: और बासहूलत
5: बेंडीना, बेंडीना।
2: तो आप किस तरह कहेंगे?

0: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है।
3: दोजो
2: आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा यह किसी काम की इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
4: दोजो
5: दोजो
3: दोजो।
1: सामईन अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
5: दोजो।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
3: ओ बेंटो दा यो बुकु गा त्सुकुत्तान दा दोजो।
6: किरे सुगोई इतादाकिमास कोनो तामागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
7: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजु दा ने।
3: बुकु शेफु नी नारिताई न दा।
7: ई ने।
1: अब हारूसान की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी यानी चेरी के फूलों का नजारा।
2: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
1: जी यकीनन। मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना और उनके नीचे बैठकर खाना पीना बहुत पुरलुत्फ होता है।
2: चेरी के फूल मार्च से मई तक जुनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की जानिब खिलते जाते हैं। मुल्क भर के लोग अपने अपने इलाके के फूल खिलने के मुतवक वक्त से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई और खिलने के मौजूदा मरहले के ऐलानात के मुंतजर रहते हैं ताकि इसी लिहाज से अपनी अपनी पिकनिक की मनसूबाबंदी कर सकें।
1: तो ज्यादातर लोग ओहानामी के लिए कहाँ जाते हैं?
2: कई लोग अपने अपने इलाके के बागात या सड़कों के किनारों पर लगे चेरी के दरख्तों पर फूलों के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ओहानामी के लिए मशहूर मकामात का रुख करते हैं। टोक्यो में उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन नेशनल पार्क मकबूल मकामात हैं। इनके अलावा दरियाए सुमीदा और दरियाए मेगुरो के किनारे लगे चेरी के दरख्त भी ओहानामी के लिए मकबूल हैं। रात के वक्त बर्फी कुमकुमों से आरास्ता चेरी के दरख्त भी देखने से ताल्लुक रखते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु का कहना है कि दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सर्वोच्च पदों पर जापानी न्यायाधीशों का होना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों को मजबूती देने के जापान के प्रयासों को दर्शाता है। सोमवार को टोक्यो में आयोजित 4वीं टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मोतेगी ने एक वीडियो संदेश से संबोधित किया। विदेश मंत्रालय एशियाई और अफ्रीकी देशों के सरकारी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सटीक ज्ञान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मोतेगी ने कहा, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई है वो कई चुनौतियों से घिर गई है, इसलिए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण युग में जी रहे हैं जो ये निर्धारित करेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समग्र रूप से कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों की भूमिका को बहुत महत्व देता है और वो इन संस्थानों को मजबूती देने में सक्रिय है। मोतेगी ने जोर देते हुए कहा, हमारे सामूहिक प्रयास इस बात में दिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों के अध्यक्ष जापानी न्यायाधीश हैं। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट प्रक्रिया से जुड़े शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के अनुरूप ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का शुल्क मौजूदा 10,000 येन यानी लगभग $63 से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी $1,250 से अधिक कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत रूप से ही पूरी की जा सकती है। निवास वीजा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 है, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 है। लेकिन अब 3 माह के निवास वीजा का ऑफलाइन और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया जाएगा। 1 साल के निवास वीजा का शुल्क बढ़ाकर 33,000 येन यानी $205 से अधिक कर दिया जाएगा, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 होगा। 5 साल या उससे अधिक के निवास वीजा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन यानी लगभग $470 और ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी $400 से अधिक कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों सहित वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे आवेदकों के लिए शुल्कों में रियायत देगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनएचके को पता चला है कि पूर्वोत्तर जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली घर में 2011 की दुर्घटना के बाद दूषण मुक्ति कार्यों के तहत हटाई गई मिट्टी को टोक्यो के बाहर दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मिट्टी को टोक्यो के पड़ोसी शहर साइतामा और पूर्वोत्तर जापान के सेंदाई शहर में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसरों में उपयोग करने की व्यवस्था के अंतिम चरण में है। मिट्टी को फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित अस्थायी भंडारण सुविधाओं में रखा गया है। कानून के अनुसार मार्च 2045 तक प्रीफेक्चर से बाहर इसका निपटान अनिवार्य है। सरकार की योजना है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की कम सांद्रता वाली मिट्टी का इस्तेमाल देश भर में सार्वजनिक कार्यों और अन्य परियोजनाओं में किया जाए, ताकि अंतिम निपटान तक इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। इस योजना पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पिछले साल से ही टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों सहित कई स्थानों पर इसका उपयोग कर रही है। टोक्यो में मिट्टी को फूलों की कुछ क्यारियों और अन्य जगहों में डाला गया है। इसमें सरकारी मानक के अनुरूप प्रति किलोग्राम 8,000 बैक्वेरल से अधिक रेडियोधर्मी सीजियम नहीं है। इस मिट्टी को फैलने से रोकने के लिए इसके ऊपर साधारण मिट्टी डाली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में हाल में आए भीषण भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर निराधार जानकारी फैल गई है कि मुस्लिम निवासियों ने आश्रय स्थलों में परोसे गए पोर्क के व्यंजन की शिकायत करके परेशानी खड़ी की। एनएचके ने कुमामोतो प्रीफेक्चर सरकार के अधिकारियों और प्रीफेक्चर की 38 स्थानीय नगर पालिकाओं के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने आश्रय स्थल स्थापित किए थे और पाया कि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। पिछले महीने कुमामोतो में भूकंप के बाद एक्स, थ्रेड्स और अन्य सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि मुसलमानों ने खाद्य सहायता के रूप में परोसे गए पोर्क वाले मिसो सूप के बारे में शिकायतें की। ऐसी पोस्ट्स को कुल मिलाकर 1,60,00,000 से अधिक बार देखा गया। खबरों के मुताबिक ये पोस्ट्स भूकंप आने से पहले एक ऑनलाइन

0: और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं ने भूकंप से प्रभावित मुस्लिम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई थी। कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक अधिकारी ने एनएचके को बताया कि आश्रय स्थलों पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि खाद्य सहायता के रूप में उसे पोर्क व्यंजन परोसा गया। कुमामोतो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस तरह के पोस्ट ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इन्हें सच मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को नजरअंदाज करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि वे 25 वर्षों से जापान में रह रहे हैं और हाल में वे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव में वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि जापानी लोग उन्हें बताएं अगर देश में मुस्लिम लोग कुछ गलत कर रहे हैं और वे इस्लाम के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।